चीजें नहीं। सुनामे का नाम सुन लिया ही भगवान ने अपने तखत को चार मारी। तो यहां आ गए, कहने लगे हो भगवान मेरा मित्र सुनामा, मेरा प्यारा सुनामा भगवान कृष्ण जी पद्धे जाए पहुंचे जिथे सुनामा खड़ा है। जाके कीता दूरों देख अयोधार जी ने दूरों देख दंडौत कर दंडौता कर दंडौत जान दे एक तो होते ना पर मत्था टेक ले एक है दंडौत दंडौत हो गया सारा श्री लम्मा पाठ परोस कर दिए दंडौत बंधन अनुभव अंधवारे हो कितने कितने उसे प्रेम यानी सात दिन जो दूर हो गया के दंडौत कर सारा श्री पूजा करके दो मिनट जोड़ के एक गुरु के नमस्कार भगवान कृष्ण जी सुनामे भी अगे जाके पहला दंडौत की दोनों देख दंडौत करे भाई साहब जी लिखते हैं ना

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत

उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय की भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दीजै जांचे संत जन उस गोपाल की सेवा करके ते भगत

बहुत है। उस गोपाल राय दे कार खेड कर दिए, कदी किसे नु मार देंदी, कदी किसे नु मार देंदी। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार खेड कर दिए, एहो जिया ओ राजा।

रामदेव ने बाणी च बयान कीता कि बादशाह कहन लगा ऐ नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नूं जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना होई ता मैं तेनू जानू मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच इस तरह बयान कर दे।

बन लिया ते बादशाह कह लगा देखू तेरा हर बीठल ए नामदेव दस मेनू तेरा बीठल तेरा भगवान कित्थे।

नामदेव नूं कैद कर लिया जाए। सत घड़ियां दा समां दिता, अगर सत घड़ियां विच ए मरी हुई गां जिंदा ना हुई ते नामदेव नूं हाथी दे पैरां थले लताड़ दिता जावे। नामदेव नूं कैद कर लिया। नामदेव दे नाल प्यार करन वाले मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह दे कोल गए ते बादशाह नूं ए बेनती कीती।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई, गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई। भगत जी आप बयान करते हैं।

दोवे मटकियां बादशाह दे अग्गे धरियां बादशाह महलां विच है भगत नूं दुख दिता सी हुण परमेश्वर ने राजे नूं बादशाह नूं दुख दिता ऐसा दर्द उठिया कि जिदा इलाज कोई नहीं।

ऐ मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह मेरी प्रीख्या लैण दा तां फायदा है जे हुण तू भी सच ते चले किसे नूं दुख ना देवे।

ए कीमती से जा तुसा आप वर्तनी है संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती से जा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी से जा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सीजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगे, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक बारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पे।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

जाए ता इंसान बैराकी हो जाता है, परमेश्वर दे नाल जुड़ जाता है। गुरु दयाल हो जाए ता पराई निंदा आदमी छड़ देंदा है। गुरु दयाल हो जाए हर पासे उन्हूं परमेश्वर दी जोत नजर आंदी है। जे गुरु दयाल हो जाए ते मत्थे दे लेख जड़े ने ओ भुगता दिंदा है।

पर जे गुरु दयाल हो जाए देहरा फिरे देवरा कहते मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नू जदों पंडता ने नीवी जायदाद समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

दयाल हो जाए तो छापर छाई वो सड़े हुए घर भी बना देंदा है, क्योंकि नामदेव की छन सड़ गई सी ते परमेश्वर ने आप नामदेव की छन बनाई सी। भगत जी कहते ने जो दयाल हो जाए तो छापर छाई वो आप अपने प्यारियां दे घर बनांदा है, ते जे दयाल हो जाए

बादशाह ने पूछा, भगत जी एक सेजता मेरी है, ए बाकी सेजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदे, पेट करदे दसां नूं आंदी फिरत विचों, ता ओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदे। ए सारियां सेजां तैनूं मिलणियां सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजां हुण तैनूं नहीं मिलनियां। ता बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे ने पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। है बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिहड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर, ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं हुंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई, खंड ब्रह्मंड बनाए ने,

उस परमेश्वर दे घर की है भगत जी ने बयान कीता जांचे कर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे हैं करी सर्व व्यापक अंतर अरे प्रणमय नाम देओ तांची आन सगल भगत जांचे निशान ऐ बादशाह ओ परमेश्वर इतना ब्यांत है ए जो मैं दसे है ए ता कुछ भी नहीं सब कुछ होता है ओ बनान वाला है प्रणमय नाम देओ तांची आन नामदेव आखद है ऐसे गोपाल राजे भी असी शरण विच हां ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लेंदी है इस करके भाई राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

जिथे अंब लगा होवे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवे धरती पानी नाल प्यार करदी ए बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल कोकल अंब दे नाल।

करनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी इसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

मुनि ऋषि सारे चाहते ने ए परमेश्वर तेरे दर्शन हो जाए, पर बिरले काहू डीठला किसे बिरले नु ही तेरे दर्शन।

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए। ए नामदेव भी तेरे नाल इना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होण।

गीत दा शब्द पढ़िया नामदेव जी ने अखां बंद ने खूह पानी दे नाल नको नक भर गया। संत ज्ञानेश्वर ने किया नामदेव अखां खोल देख परमेश्वर ने तेरी बेनती सुनी सारा खूह पानी नाल भर गया। नामदेव जी ने अखां खोलियां देखिया कि खूह पानी नाल भरे है। लोग जड़े ने हथा नाल ही पानी कढ़ कढ़ के पी रहे ने। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे नामदेव सचमुच तू परमेश्वर नू अपने वस विच कर ले है। जिस तरह तू कहना है वो परमेश्वर करता है। और नामदेव जी सगा चुम उठे ते कहन लगे परमेश्वर सचमुच तेरा नाम बड़ा सोहना है तू आप

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है, अधी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़ियां पौड़ियां तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन, कबीर साहब मूह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे यूं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन। होए बिरक्त

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने वास्ते

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाए कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आ बयान करदे ने।

ठोकर लाण दा ऐसा असर होया जिस तरह लोहा पारस नाल लग जावे उस वेले सोना बन जांदा है। इसे तरह ही कबीर साहब दे शरीर दे नाल स्वामी रामानंद दा पैर लगा ते लूलू दे विचों राम राम दी आवाज आन लग।

ऐसा शुरू किए स्वामी रामानंद पैर लगा के एक दा के उठ राम के राम को भाई गुरुदास जी कहंदे नी राम कबीरे भेद ना पाई राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदों इशनान करके जांदे सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नूं इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके कपड़े भी पवाए सिर ते ताज भी रखे आ मुकट कलगी भी रखी पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा ते चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन उन्हां जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दे। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए उठ के बुआ खोलिया बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है। कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं तू ते मेरे नालों भी अग्गे चला गया है तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरे भगत भगत धन्ना जिन्हां बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करते हैं।

चौकी ते रखे है, रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ के ठाकुर नो

0: परमेश्वर नु रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असि खा ली हुण दस तेनु चाहिदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेनु की चाहिदा। ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनु ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला

चाहिए क्योंकि जिमीदार सी। पहली चंगी चाहिए, अनाज चंगा चाहिए, ताकि इन चीजा वालों मैं निश्चिंत होके

कोड़ी नुके ऐ भगवान पैरी सोनी जुती पाई होवे सोना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मज भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं सौ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: रत्नवा बारू भीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु समझ रच बिगड़िया ना हनी अजनु समझ

सब मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इस दा मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर झुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मुंह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा पर संग वखरा, साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहान तो वखरी है, साडा जिंदगी जीवण दा ढंग वखरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो गज के वाह।

पेंदे खाने क्या शहनशाह सलामत, मैं गुरु कोल नौकर सा। मेरी 6 महीने की तनखा रहंदी सी, जदों मैं तनखा मंगी तां गुरां ने मैनू कोरा जवाब दे दिता। मैं बादशाह सलामत कोल फरियाद करन बारे कहा तां मेरी बेइज्जती करके मार कुट के दरबार विचों तक्के दे के कढ दिता। गुरु ने गुस्से विच आके जो कुछ हजूर दी शान दे खिलाफ कहा, मेरी जुबान बयान नहीं कर सकती शहनशाह। वो अपने आप नू सच्चा पातशाह ते हजूर नू झूठा बादशाह कहंदे। जिन्ना भी हो सकिया पेंदे खाने गुरु जी दे विरुद्ध कहा। बादशाह दे दिल विच पहला ही गुरु साहिब वास्ते साड़ा सी। वो पेंदे खान दियां गल्लां सुन के भड़क उठिया ते उसने अपने जरनैल काले खान नू बुला के गुरु साहिब ते हमला करन दा हुक्म है।

प्यार नाल सुनियो ये नहीं करता कोई रचना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश के गवैशी विच जिसन बिखड़े टेढ़े ढंग ना थोड़ा जा गाया जाता है ये आम जिन्हें सजना जा भैणा ताल सुर की समझ ना हो तो कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा होता है जिदे नाल चीज का समुचा रस माणिया जाता है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होगी जे भैणा जा वीर लय सुर के अंदर बोल सकन तो इस चीज नाल बोलन तो नहीं तो प्यार नाल सरवण करना इस शब्द के विचों बहुत कुछ मिलना है।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलदी हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे, जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगा। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है ते साहब कहिंदे ने, आ हुण विचार इस गल दी वी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।